काहे छिपो छायलो राम न लावो चीप नामा कैत लोचना मुख तेरा मुसमाल हाथ

लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यो मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभु अपना धरता। दीस आवत में बहुत बियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा

0: सब सबको
1: सबको आखे अपना जसनाई सोचड़ कदिया पीता आपो अपना पिलेखा संडिया यारा नाई आज जागता।

उड़ो ना कागा कारे, देख मिली जय अपने राम प्यारे। राग कौड़ी दे विच उच्चारण कीता।

अगर आप सारे मैं पिछले की इतना चुकी किया है इसनु सचमुच एक सत्संग समझते हुए इन्हों शब्दों के नाल अपनी आत्मक अवस्था उच्चा करने की कोशिश करिए। इन्हों शब्दों तो असी अपनी तस्वीर देख सकते हैं। मैं आप जी के सामने अज के इस कीर्तन च एक शीशा पेश करना चाह रहा हाँ जिस शीशे दे विच असी अपने आप को देख सकी। मैं आप जी के सामने साडे सतगुरुआं की जो अंदरली अवस्था है उन्हां दी स्टेट ऑफ माइंड वो रख रहा हाँ ताकि सानू कुछ ना कुछ ते चोट लगे कि असी किहो जहे हाँ अते जिन्हां दे असी अपने आप नू होण दा दावा दिंदे हाँ उन्हां दे हिरदे किहो जहे हन। आओ हुण इसे ही शब्द से जिस तरह भगत कबीर जी ने अपने अंदरली अवस्था इस दृष्टांत दे नाल पेश कीती है हुण मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज दे कुछ एक प्रमाण आप जी दे सामने रखण लगा हाँ अते आपने देखना कि गुरु अर्जन देव जी महाराज की हार्दिक अवस्था जो है वह किस

इस दे विच भी गुरु अर्जन देव जी ने अगेन दोबारा उसे ही औरत का प्रमाण दिता है जिसका प्रमाण कबीर साहब ने दिता है। कहते जिस तरह किसी पत्नी का पति बाहर चले गया होवे, अगर वो हार कज्जर वस्त्र अभरण गहने आदि पावे भी ता भी कहते उस दे अंदर की हुंदा है, मोहन नींद ना आवे हावे अते उस दे अंदर हौके हुंदे हन। तो उस दे अंदर की इंतजार हुंदी है, उडीनी यानी उड़ीक, उडीनी उडीनी उडीनी कब घर आवे री, कदों वो प्रभु प्यारा घर आवेगा। ये मिसालां दे के भगत दे गुरु दे सिख दी अंदरली अवस्था नू गुरु साहब ने पेश करन दी कोशिश कीती है। अते गुरु ग्रंथ साहब आप जी ने ये भी पंक्तियां सुनिया ही है ना कि खंभ विकंदड़े जेल हां कि ना सावी तोल तन चढ़ाई अपने लहां सो सज्जन टोल। कहिंदे इंतजार तमन्ना इतनी बद गई है कि अगर किते मैनू खंभ बाजार चो मिल जान ते मैं अपने आपे दी कीमत दे के उन्हां नू खरीद के अपने तन दे नाल जुड़ा के अते उड़ारियां लगा लगा के अगर उसनू मैं लभ सकां तो कहिंदे मैं ये भी करन नू तैयार हां। हम भी कांदड़े जेल हां कि ना सावी तोल तन जड़ाई अपने लहां सो सज्जन टोल। तो हुण तक मैं जितनी भी मिसालां आप जी नू दित्तियां हन इन्हां मिसालां दे विच ये पेश कीता है, ये आप जी दे सामने रखिया है कि गुरु साहिब एक खास किस्म की अवस्था एक खास किस्म का ह्यूमन लाइफ के विच कीता होया एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही भागशील लोगों ने कीता है उस दे नाल साडे नाल उसनू साडे नाल जो शेयर कर रहे हैं साडे नाल सांझा कर रहे हैं। हुण जो अगला हिस्सा थोड़ा जा आप जी दे सामने मैं रखना चाहना हाँ

तेरे अंदर कदे वैराग, तेरे अंदर कदे उदासी, तेरे अंदर कदे उपरामता आउंदी ही नहीं है। पाप उन्होंने कहने का यह है कि जदों अकाल पुरख वाहिगुरु का प्रेम किसी लग जाए तो उस दे अंदर सब तो पहली चीज की होंगी है, बाकी तमाम चीजों के प्रति थोड़ी रुचि घटनी शुरू हो जाती है। जगत के प्रति संसारी चीजों लई एक उपरामता आनी शुरू हो जाती है। उस उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का आप जी नूं एक जो श्लोक है वह सुनाना चाहना, कहिंदे

ग्यारह श्लोक है। अगर असी एक बाणी मंत्र हन, अज ही मैं सवेरे एक लाइन पढ़ रहा सी, गुरु साहब कहते हैं सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, कहते है कि तेरी बाणी ही असल अमृत असल मंत्र है। तो इत्थे हजूर ये कहते हैं कि बिखियन सिओ काहे रचियो निमख ना होए उदास। उदास लफज का जो इस दे पिछे जो कोनोटेशन है उसनों असी थोड़ा ध्यान दे नाल समझिए। असी उदासी तो मतलब समझते हैं डिप्रेशन गम, जिसनों असी बड़ी नैगेटिव सेंस दे विच लेने। लेकिन गुरबाणी जदों उदास लफ्ज आता है तो इसके जो भाव हैं इसके अर्थ हैं वो टोटली अलग हैं। हुण असी उदास लफ्ज नूं किस तरह समझिए। एक है जो साड़ी जिंदगी दे विच डिप्रेशन आता है, असी बड़े अंदरों एंगजाइटी दे नाल फ्रस्ट्रेशन दे नाल जदों कमजोर हो जाने हाँ उदों भी साड़ी जिंदगी च उदासी आती है। लेकिन

मैं इस सारी दुनिया की हालत देख के मेरा तो मन उदास हो गया है। मैनू तो इस दे विचों को सार नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों को तत् नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों कोई काम वाली शायद नजर ही नहीं आती। देखते हैं कि हार जरे जो लाकरी, केस जरे जो कास, ये जग जरता देख के पयो कबीर उदास। तो गुरु महाराज सानू ये समझा रहे हैं कि इंसान तेरा चित करे ये तमाम कुछ जानदा होया देख के निराश नहीं होंदा, तेरे अंदर कदे उपरामता नहीं आती, तेरा चित करे इस तो कोई डूंगी चीज नहीं लगता, तेरा चित करे अजिही चीज में नहीं लगता जी कि हमेशा ही कायम रवे, ना कि तू उन्होंने चीजा लगता रहना है जड़िया ने बिन सी जाना है। तो सतसंग जी अज की सारी विचार दे विच जो सानू सुनेहा मिल रहा है, जो सानू उपदेश मिल रहा है, वो ये है कि गुरु महाराज कहते हैं उस इंसान दे पाक अच्छे हैं। बस इस दे नाल मैं अपने विचार नूं कंक्लूड करनी चाहना। गुरुआं दी नजर दे विच ओ इंसान बहुत फॉर्चुनेट है, ओ इंसान बहुत ही भागा वाला है, बहुत ही किस्मत वाला है जेदा दिल कुछ होर भी लभे, जेदा चित इन्हां तमाम दुनिया दे खाणियां दे नाल भर गया होवे, पोशाकां दे नाल भर गया होवे, जिहदी रुचि बदल गई होवे। असी ये सुनदिया सुनदिया अंदर ये देखना है कि साडी रुचि बदली है या नहीं बदली। असी अपने आप से सवाल करना है कि साडी रुचि की है, असी जिंदगी च की लभदे हां, किस किस्म की साडी रुचि है, अते जिस किस्म की रुचि हुंदी है उसे किस्म का इंसान हुंदा है। आ हुण गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का एक श्लोक, इस दे उत्ते जो मोर लगांदे हन अपने एक श्लोक के द्वारा उसनु सुनो कहिंदे।

आए अंत सावा नित खड़ी मुझो बनबाली राम राजे तार गुर हर मार जाली मेरे मंत्र नाम धार है खून जाली जन्ना ने सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली सुख मैला श्री कृष्ण चार बसे थे देखो

ज्ञान सदंग वेद सदंग ब्राह्मणे खत्री सदंग सूर सदंग शूद्र सदंग प्राकृत सर्व सदंग एक सदंग जे को जाने भे नानक तंका दास है सोई निरंजन दे।

विस्मादरं विस्मादनांगे फिर जंत स्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे वडानी।

पड़ पड़ गड्डी लगती है पड़ पड़ परिये साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड़िए खात, पड़िए जेते।

का टेढ़ धोती कखाई, हाथ छुरी जग कसाई, नील वस्त्र पैर होए प्रवान, मलेश तान ले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा।

दर्शनो गुरचरनी मथा गुरचरनी मथा उस्तत मन में करनंकार कर्मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसन।

नैनों पेट ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग, चरण चलो मार्ग गोविंद मिले पार।

मेरे सिर की लोहड़ी पैंदी जो गया मैं देखी अजमाइश पूरा उतरदा पर हजूर वैराग चाके कहन लगे गुरा जो गया हो गया मैनू सिखा मैं जिथे जिथे भी अजमाया उथे उथे पूरा उतरिया पर जो गया तो कड़ी अजमाइश की कड़ी सात की पंथ दे वाली किसे बैराग चाके ते जोगे नु मुखातब होके कहते हैं।

0: क्योंकि यार रोई जाओ उतने तक जितने तक तेरे अंदर हाँ मैं पानी बन के खाथानी बाहर नहीं आ जाती जोगिया की कहीं महाराज मैं भूल गया हजूर कहने लगे जोगिया भूल गए आप के पाचा हजूर कहने लगे बख्तिया खुश भाई क्योंकि जोगा बख्शिया गया तुम्हें भी बख्शे गए आप सारे बख्शे गए हैं प्यार आखो धन श्री गुरु गोविंद जी का ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को सूरी चढ़ता है उन्हें तेरे नहीं देखना है मैली जगह है जा चंगी है गंदी मंदी था सूरी रोशनी देता है गुरु की मेर हर था जाती अज थोड़े उत्ते भी पता है गुरु थानू भी दाता मिली जोगा वक्त आ गया पर भाई जोगा से ने कहा महाराज एक शंका छोटा जहा रह गया अदूर कहने लगे बार कद महाराज रेखवा दे चवारे
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

मन इच्छे से फल पाए करते आप साया, करते आप साया सर्व सुख पाया पुत पाई से पुत पाई से अब चल।

0: माता तरफ महात्मा दिवस रात पदाए दया खिले आईया बुरे आईया वाचे तरम दूर करनी आपो आपने जिन नाम दया कै मुशक्त कार नानक प्रेमले नानक प्रेमले
1: वाहिगुरु।